लीजिए सामिन, सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए। हजारों गैर कानूनी इसराइली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया है। तुर्की समेत 8 ममालिक ने मस्जिद अक्सा पर इश्तियाल अंगेज धावों के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। जापान के वजीर खारजा तोशी मित्सो मोतिकी ने फलस्तीन के लिए बैन अल-अक़वामी हमायत में मजबूत अंदाज में इजाफे की उम्मीद जाहिर की है। और अब खबरें तफसील के साथ। हजारों गैर कानूनी इसराइली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया है। 3,200 से जायद गैर कानूनी आबादकारों और कौमी सलामती के इंतहा पसंद वजीर इतमार बिन गवीर ने यहूदियों की तशाबाओ तादील के दौरान मशरकी अलकुद्स में वाक़ मस्जिद अक्सा पर छापा मारा। इसराइली पुलिस ने फलस्तीनी नमाजियों पर सख्त पाबंदियां आयद की। वीडियो मनाजर में यहूदी आबादकार मस्जिद के सहन में इज्तमाई दुआ करते, इसराइली परचम लहराते और कौमी तराना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुर्की समेत 8 ममालिक ने मस्जिद अक्सा पर इश्तियाल अंगेज धावों के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। तुर्की मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और उर्दन के वज़राए खारजा ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है। इन 8 ममालिक ने इसराइली वज़रा और आबादकारों की जानब से सिक्योरिटी फोर्सेज की हिफाजत में मस्जिद अक्सा पर मारे गए बड़े पैमाने के दावों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। मुश्तरका बयान में मस्जिद अक्सा के मुसलमानों की इबादत का होने पर जोर दिया गया और कहा गया है कि इसराइल की अलकुद्स की तारीखी और कानूनी हैसियत को तब्दील करने की कोशिश नाकाबले कबूल है। काबस कुव्वत इसराइल से अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया है। जापान के वजीर खारजा तोशी मित्सो मोतेगी ने फलस्तीन के लिए बैन अल-अक़वामी हमायत में मजबूत अंदाज में इजाफे की उम्मीद जाहिर की और कहा है कि दो रियासती हल के नफाज के लिए फलस्तीन का बरकरार रहना नहायत जरूरी है। जापानी सरकारी नशरियाती इदारे NHK के मुताबिक मोतिगी ने यह बयान बुध के रोज फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में मुनक़दा फलस्तीन की तरक्की के लिए मशरकी एशियाई ममालिक के दरमियान तआवुन कॉन्फ्रेंस के वजारती इजलास की मुश्तरका सदारत के दौरान दिया है। फलस्तीन की हिमायत पर तबादला ख्याल के लिए मुनक़दा इस कॉन्फ्रेंसी फ्रेमवर्क का आगाज 2013 में जापान की क़ियादत में किया गया था। इजलास में फलस्तीनी अथॉरिटी और मशरकी एशिया के ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर जोर देते हुए मोतिगी ने कहा है कि ये फ्रेमवर्क दरमियानी और तवील मुद्दत में इंसानी वसाइल की तरक्की के जरिए फलस्तीन के रियासती इदारों की तामीर और रियासत बनने की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने सेहत, तालीम, ज़राअत और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंद और तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की तरक्की को इसकी नुमाया मिसाल करार दिया है। मोतिगी ने मजीद कहा है कि शराकत दार ममालिक का अपनी अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हुए फलस्तीन की मदद के लिए मुश्तरका यानी सैफरी की तावन की शक्ल में काम करना नहायत अहम है। वाज़ेह रहे कि जापान मुसलसल दो रियासती हल की हिमायत करता आया है, ताहम इसका कहना है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मुनासिब वक्त और तरीकाकार का जायजा ले रहा है, इसलिए इसने अब तक फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। टोक्यो ने 1993 से अब तक फलस्तीनी अवाम को 2.8 अरब अमरीकी डॉलर की इमदाद फराहम की है। इस इमदाद में से तकरीबन 410 मिलियन अमरीकी डॉलर अक्टूबर 2023 से अब तक भेजी गई इंसानी इमदाद और इमदादी सामान पर मुश्तमिल हैं। फलस्तीन वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली इलाके में एक बच्चे समेत 3 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया और इनकी लाशें भी वर्सा के हवाले नहीं की। वजारत सेहत ने जुमेरात को जारी करदा बयान में कहा है कि इसराइल और फलस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान सरकारी राबता इदारे सिविल अफेयर्स जनरल अथॉरिटी ने इतला दी है कि इसराइली फौज ने फायरिंग करके नाबलूस के मशरक में वाक़ कस्बे बैत फोरिक में 20 साल महमूद हुसैन अबू समरा और 16 साल मोहम्मद सामर मिलिता को कत्ल कर दिया है। बयान में मजीद कहा गया है कि जनीन के मशरक में